मुझ सा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। मुझ सा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई।

एक ही सी मंजिल पे आ गए हैं, न कोई अपना न हम किसी के। हा माय अल्लाह, व्हाट अ मंजिल वी हैव कम टू। नाइदर आर वी ऑफ बेनिफिट टू एनीवन एंड नोबडी ऑफ एनी बेनिफिट टू अस। द मुस्लिम हु वाज सपोज्ड टू बी ऑफ बेनिफिट टू द एंटायर मैनकाइंड, टुडे ही इज नॉट इवन ऑफ बेनिफिट टू हिज ओन फैमिली, हिज ओन वाइफ, हिज ओन चिल्ड्रन। इफ यू हैव टू लिसन टू द केसेस ऑफ अब्यूज, and as far as the Muslim Ummah is concerned, if you see some friendship of the outside world with the Muslim Ummah, then it is nothing but hypocrisy. Saudi Arabia was the blue-eyed boy of the American government. What happened? Iraq and so many other places in the world, what happened? Our trust that we placed in these idols did not help us in any way. Ye kaisi manzil pe aa gaye hai, na koi apna na hum kisi ke. Nothing but destruction, destruction. Nothing but causing hurt, injury, pain to others. Tum apne daman mein aa ja aqa, tamam apne ghulam le lo. ये दिल में अरमा है अपने तोयब, मजारे अकदस पे जाके एक दिन,

गंदगी के दुरुस्त कर दे माल मेरा। ओ अल्लाह, वट एवर लाइफ इज गॉन इज गॉन, बट द लाइफ दैट रिमेन्स, ओ अल्लाह, लेट दैट लाइफ बी स्पेंट इन सच ए मैनर दैट आई एम ओबीडियंट टू यू एंड योर लव इज फिल्ड इन माई हार्ट एंड द लव ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ इफ आई लिव इट मस्ट बी इन योर लव, एंड व्हेन आई डाई इट मस्ट बी इन योर लव।